0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: नो पानी नो परेशानी।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8 a.m. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
7: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
9: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। स्टेप अप, बिल्ड अ साइबर सेफ लाइफ एंड अनलॉक प्रीमियर करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी एट द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
10: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
11: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम brings you the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Hands-on workshops, red and blue teaming competitions. Agar aap student hai, cyber security professional ya ethical hacker, Pakistan ke agle cyber defender baniye. Register now at cyberhackathon.pk.
12: This program is brought to you by
5: Purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
13: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taaja.
14: And Tabal family mixture laaye, umrah par jaye.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
10: And Pakistan.

0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: पानी नो परेशानी.
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
3: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
4: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्राह पर जाएं.
5: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक.
7: एंड

0: us on facebook.com/FM247365.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना बात करनी ना तुझको सुनानी सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ आता नहीं मेरे दिल को सुकून दुनिया झूठी दुनिया वाले हैं फेक उनके बारे में मेरा है टेक I don't care what you think, what

0: FM 100 Traffic Update.
1: पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक इजार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक करीब विवाद से वो ट्रैफिक जो ईसा नगरी और वहां से स्टेडियम रोड में जाने वाला है उसके दरमियानी रास्ते पर ऑफिस टाइमिंग की वजह से ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है, जबकि जौहर मोड़ से वो ट्रैफिक इशारा फैसल की जानी आ रहा है उस पर भी ट्रैफिक कुछ लोग मूव कर रहा है। क्वारंटीन इंडस्ट्रियल एरिया से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक मवाद चौरंगी की जानब जाने वाला ट्रैफिक जो इस वक्त रुख चौरंगी से जा रहा है गोदाम चौरंगी और वहां से सिंगल चौरंगी की जाने उस पर कुछ ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है। लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।
2: मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ। मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ। मैं थक सा गया हूँ और चुप।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
6: 11.99% 100 FM।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: 100 FM।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: 100 FM।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
0: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
2: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
3: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
4: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
0: एंड
4: HBL

0: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद्दे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 24/7 365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
2: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
2: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
3: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
4: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
3: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.9%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
8: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
9: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
10: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
11: This program is brought to you by
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
12: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
13: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब, वहां HBL।
10: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: パランパンパンパランパンパン。
1: It's 9:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो करीबी एचपीएल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
2: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
3: एंड दबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
4: एंड एचबीएल फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां एचबीएल
5: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
6: एंड

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil to hai aaram.
2: Zara behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
11: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
12: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
4: एंड टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
5: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.9%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
6: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
8: 11.99% 100 FM।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
8: 100 FM।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99% 11.99%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%
7: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: 100 FM
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
10: बैन-उल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: FM 100
11: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
9: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: किसने कहा था पैसे

0: AGAM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: Like us on facebook.com/fm247365
11: FM 247365

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: FM 24/7 365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to tumko hai aaram.
2: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
5: 31 साल fm100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: facebook.com/fm247365 fm247365 Karachi, Lahore, Islamabad, Edinburgh.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 3 p.m.
2: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए। वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाए। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365
6: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM 100.
8: Come on.

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
2: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उम्र लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्राह पर जाएं।
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365
4: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.
7: बातें करने का टाइम

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
4: 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan
3: assalamu alaikum pakistan

0: हजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
5: Back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादियामा के लिए वजारत इत्तिलात व नशियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: 11.9% 11.9%
6: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%।
8: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: Linux Sherlai, Umrah Barjai.
1: And HBL, Freedom Account, Jaha Khab. Vaha HBL
2: and Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
7: This is your music.

0: your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
8: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
11: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.9%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
6: 11.99% 100 FM
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखो
2: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
7: facebook.com/fm247365 FM247365

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
2: एंड कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
3: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
1: एंड टपाल फैमिली मिक्सचर लाए उमराह पर जाए
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL एंड

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
3: Sarsabz Nitro Falls ko laga aur jeet taja
0: and
4: Tabal Family Mixture laye umrah par jaye
1: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: Your location for maximum music.
1: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery. Hai to dil ko hai aaram.
3: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: 11.9%
6: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%।
8: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: 100 FM।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
11: Nepal Family Mixture ke saath har safar khas. Umra likhe 02111182725 par WhatsApp kare. Pack ke andar maujood code bataye aur lucky draw mein shamil ho jaye. Nepal Family Mixture laye, umrah par jaye.
9: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
12: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
1: एंड तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है,
7: शराइतों से वाबित लागू है।
8: 11.99% 100 FM।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: 100 FM।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: 100 FM।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: This program is brought to you by
10: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taja
0: and
11: Tabal Family Mixture line urah par jaye
9: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL।

Acha. That we come to run things on the road. See?

0: 7 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by
1: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet taja.
0: And HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: 11.99%, 11.99%।
6: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
7: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%।
9: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

करते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरत, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। बल्कि रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अंग गुलाब, फिर वही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उसे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ से अब दर्द उठे। जख्म को भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है। पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर, फैले ना हाथ, हमारे बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच।

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hato piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उम्र लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्र पर जाएं।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: This program is brought to you by Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
1: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। पातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: Connect FM, your location for maximum music.
1: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
4: FM 247365

हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को आयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से है? और अपने बारे में बताएं भैया। और अपने बारे में बताने के लिए आपको जो है वो यहां का मैसेज नंबर चाहिए होगा कि अच्छा स्पेस टेक्स करेंगे, सेंड करेंगे 36361। अच्छा जनाब, और ड्राइव कर रहे हैं तो इत्मीनान सुकून के साथ। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, मेरा और आपका साथ रात 11 बजे तक। अच्छा जी, फ्राइडे वाले दिन जरा मैं हिट जो पॉप गाने थे वो मैं आपको सुनाता हूं। अच्छा, आज की क्यू शीट थोड़ी सी मिक्स है, इंग्लिश ट्रैक्स भी हैं 80s के 90s के और साथ साथ उर्दू के भी, यानी हमारे जो पॉप बैंड्स हैं उनके गाने भी हमारे पास मौजूद हैं, सोलो सिंगर भी। रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आप डेडिकेशन जरूर, किसी को डेडिकेट करना हो मोस्ट वेलकम। और पहला जो मैं ट्रैक प्ले करने वाला हूं यार, बहुत ही अच्छा बैंड आरओ, यकीनन बहुत से लोगों ने इस बैंड का नाम सुना होगा। उसके वोकलिस्ट फारूक, क्या कहने उनके, चेक करें इनका ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
4: Active.
5: Yummy.
4: Adorable.
6: Zabardast.
7: Ye pyaas to suno yaar.

पहला सॉन्ग मुझे पसंद आ गया है और पूरे शो मैं साथ हूंगी, क्या कहने आपके संजीदा जी, वाह वाह। सुंदर जी कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से हो? अच्छा जनाब सलाम जानिया, क्या हाल है आपके, क्यों ढोला? गुड जानी एहतराम से, बड़ी मेहरबानी, मैंने हाथ बांध के ये मैसेज पढ़ा मैंने। जनाब शामिल करते हैं अली हैदर साहब को।

वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी जरी नूर आ गई हैं और कह रही सलाम कैसे हैं बहुत दुआ सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब और गयासुद्दीन बलबन भी तशरीफ ला चुके हैं अस्सलाम वालेकुम पूरी टीम को और सब सुनने वालों को सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई ठीक है खैरियत से हैं और जनाब संजीदा मोहतरमा संजीदा आ गई है अस्सलाम वालेकुम वेलकम कर रही हैं और अल्लाह पाक के अमान में हो बहुत दुआएं बड़ी मेहरबानी जनाब अल्लाह का लाख शुक्र। अपने बारे में ये बता रही हूं कुछ कुछ बेहतर नहीं हूं। अरे हाँ यार मौसम ही ऐसा तबीयतें जो है वो सबकी जरा ऊपर नीचे लेकिन ख्याल रखना है भैया और कहीं शो सुनकर ठीक हो जाऊंगी अल्लाह करे।

0: जबरदस्त
1: जी थी।
0: पुरानी जींस के बाद जरा टच दिया इन्होंने, मोहल्ले का फूल
1: सारी सच्ची।
0: अच्छा जनाब, बिलावल गिजरी से मैसेज कर रहे हैं। बिलावल भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं। और साथ साथ जनाब क्या कह रहे हैं, सुबल जी को भी सलाम कह दिया है, कादिर भाई को भी सलाम, तमाम प्यारे लिसनर्स को भी अस्सलाम, उम्मीद तबीयत ठीक, अल्लाह का शुक्र है भैया, बहुत करम है मालिक। अच्छा जी, फरीन शहजादी आ गई। फरीन जी की हाल है, थोड़ा तुम ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, द ग्रेट सुपर आरजे, द मोस्ट फेवरेट शख्सियत के मालिक, कैसे हैं आप मोहतरम? क्या हाल है आप? आपके तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, शहजादी आ जाती तो ये कहती जरा पंजाबी गाने जरा ज्यादा लगाया करें। तो इसी बात पर फरीन शहजादी आपके लिए ये वाला ट्रैक, और अभी मैंने मोहल्ले का भी जिक्र किया तो मैं गाना ही मोहल्ला लेके आ गया हूँ। नाम ही गाने का नाम है मोहल्ला, और इसे गाया है मजर राही साहब ने। चेक करें जरा।

हाँ जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर। अच्छा जी, आपको सुनकर खुशी होती है हमेशा से आपके शो से और आपसे प्यार है। मैं भाई नाम नहीं लिखा, इतना प्यार कौन कर रहा है, नाम लिखे भाई जरा। अच्छा जी, अंजलीना खान आ गई है, अयाज आपको सलाम, बिलावल, नौरी जरी और सारे को भी सलाम, अरशद महमूद का सॉन्ग हो सके तो मेरा एक काम करो, प्ले करते हैं। अंजलीना मैं कितो लावा, रिक्वेस्ट तो नहीं है ना, क्या कह सकते हैं। फरीन खुश हो गई, कह रही वाह वाह, सुनकर एनर्जी आ गई, चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। चले जनाब, मुस्कुराती रहे, बहुत शुक्रिया, भी कह रही मोस्ट वेलकम। और हुमा सिद्दीकी आ गई, अस्सलाम वालेकुम अयाज, और इंग्लिश सॉन्ग्स भी हो जाए। चले जनाब, नेक्स्ट जो ट्रैक है हुमा सिद्दीकी, मैं आपको डेडिकेट करता हूँ, और वो है कैसे।

जिना वेलकम बैक से FM 100 और इमरान भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्यारे से इमरान भाई गर्मा गर्म चाय। और जनाब आसिफ भाई क्या हाल है, कहाँ घूम रहे हैं आप? और आसिफ भाई कह रहे हैं कि आपके लिसनर्स आपसे इतना प्यार करते हैं, हमसे भी प्यार करते हैं। आसिफ भाई आपके लक्षण सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात से मुझे खतरा हुआ है। लेकिन आसिफ भाई बहुत प्यारे आदमी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब और गयासुद्दीन बलबन वाइल्ड वर्ल्ड गाना जो है पसंद आ गया, फुल टाइम रुबाब आ गई है भाई। आया सलाम सब सुनने वालों को भी और संजू को सलाम। कोई भी सॉन्ग संजू को अच्छा उनको डेडिकेट करने का मेरे ख्याल से लिखा है ना। ठीक हो गया जनाब। आए कितनी अच्छी बातें लिखी हुमा सिद्दीकी जी, क्या कहने। इफ यू नीड मी आई एम हियर फॉर एवर ओनली फॉर यू। आई लाइन ही खत्म थी, कमाल। आप खुद हुमा जी बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, आपको खुश रखें। आसिफ भाई आपने नहीं सुनी। अच्छा जी नेक्स्ट ट्रैक और ये मेरे हैं बहुत ही फेवरेट, कौन भला, जुनैद जमशेद।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और जनाब मलिया में मैसेज करिए, मलिया जी क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से हैं और बहुत सारी तारीफ, सब सुनने वालों को सलाम और एक सॉन्ग मुझे डेडिकेट कर, ठीक हो गया जनाब सारे गाने आपको भैया। और इरफान भाई का वही मैसेज आ गया फिर से कि भाई फेसबुक लाइव क्यों नहीं आते, यार मैं क्या करूं यार, मुझे इसी में ज्यादा मजा आ रहा था, फेसबुक लाइव में जरा ये है कि जरा मुझे गाने सुनने का मजा नहीं आता, वॉइस कम करनी पड़ती है, वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ता है, चले लेकिन मैं कोशिश करूंगा शेप वेप करके अच्छा बच्चा बन के जल छल लगा फिर मैं आऊंगा। आए इतने प्यार से हुआ जी आप मैसेज कर रही हैं, इतनी मोहब्बत से आपने मैसेज कर दी है, इनका एक फेवरेट गाना और मैं इन्हीं को डेडिकेट कर देता हूं, हुमा सिद्दीकी को, और वो है कैसे है?

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
5: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रुजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतल्लिका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पूर अज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
6: FM 24/7/365 ایکٹیو
5: یمی
6: ڈیوریبل زبردست.
5: پیاز تو سنو یار.

जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 आयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस 3636 पर बिलावल कह रहे हैं सर गुड सॉन्ग्स, थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत शुक्रिया। महजबीन आ गई है इस्लामाबाद से। महजबीन क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम अयाज, अनब्रेक माय हार्ट, वाह व्हाट अ क्लासिक हिट, नो डाउट। और अयाज सुदीन बलबन को भी गाना पसंद आ गया है और स्वीट सी प्यारी सी मेरी मिस्टर फारूक भी आ गई। फारूक क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है? मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक ठाक है, आप अपने बताइए तबीयत कैसी है, क्यू शीट कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जनाब बड़े दिनों के बाद समी साहब तशरीफ लाए हैं। समी साहब कैसे? समी शेख, शेख कहां का ये हम ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं यार रोड पे बड़ा रश है और पाकिस्तानी आवाम ऐवी खाम खा कह रही महंगाई है। वैसे ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, इतना रश के सोच है। जनाब शामिल करेंगे हदीका कियानी को और ये मेरी बहुत फेवरेट है और इनका स्पेशली ये वाला ट्रैक क्या कहने,

पुआ जनाब हदी का ख्यानी और क्या ही जबरदस्त ट्रैक और इसकी शूटिंग में एहसन रहीम ने बहुत खूबसूरत इस गाने को डायरेक्ट किया और तारिक रोड में ही इसका स्टूडियो था एहसन स्टूडियो वहां इसकी शूट हुई। बहुत ही आला ट्रैक और ये मुझे बचपन की वीजे की याद दिला देता है, डॉक्टर रिफत की याद दिला देता है। भाई जनाब और हुमा सिद्दीकी क्या बात है, इतने प्यार से मैसेज किया, मुझे लग रहा है लाइफ में कुछ है, कुछ ऐसी ट्रेजेडी है या क्या है। कभी फूड हमारी कॉल जब ठीक होंगी तो हुमा जी आपने आके ना जरा कुछ डिस्कस करना, ठीक है कि नहीं। महाजमीन कह रही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, चलो ये अच्छा हो गया। और इसी बात पर जरा सा शोखा गाना भी शामिल कर लूं और वो है कैसे,

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: FM 100's time check. It's 10 p.m.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
5: वापस आ गए हम और सुन रहे हैं 100. बिलावल कह रहे हैं एंजेलिना को सलाम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. अच्छा जनाब, सुन रहे हैं 100 और साथ साथ जनाब मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं कि अच्छा स्पेस टेक्स्ट करते हैं, सेंड कर देते हैं 3636. अच्छा जी, मैच हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, फिर दोबारा से वैसे हाइप बनने लगी है. और कल सुबह है, मेरा ख्याल से सुबह सुबह उठना पड़ेगा. रात के चक्कर में रहना कि भाई 9:30 बजे रात में देखूंगा मैं, रिजल्ट आ चुका होगा और रिजल्ट मुझे अंदर से तो पता है कि क्या होने वाला है. अल्लाह करे जीत जाए. सत्तार भाई दुआ कर लो, बाबी की दुआएं लग जाती. सत्तार सत्तार हमारे प्यारे से इंजीनियर, अस्सलाम वालेकुम. मैंने कहा बाबा जी दुआ करे, कल पाकिस्तान का मैच है इंडिया के साथ, जीत जाए चाहे. पहली नौसत उनके सर ही यूं घूम गया कि नहीं नहीं नहीं जीतेगा यार. अच्छी उम्मीदें रखा करो यार. बहरहाल मैं क्या कह सकता. अच्छा जनाब और बिलावल क्या कह रहे हैं एंजेलिना को सलाम उनकी जानिब से. वालेकुम अस्सलाम. मिसेस वारू कह रही है कि यही तो खास बात है, मिक्स प्लेट बनी होती ना गानों की, स्लो फास्ट सब फुल टाइम माहौल बना.

ये तो दुख है उमा जी, उमा जी किसी से बहुत प्यार करती है लेकिन वो लिफ्ट नहीं करा, लिफ्ट नहीं करा रहा यार, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे लोगों का क्या करूँ उमा जी, बस वो डाखाना दूसरा ढूंढे आप।

मैं जनाब क्या बात है, जुनून जुनून है। आज भी सुने इनके गाने तो आपको हिट और फिट लगते हैं। आए मेरी प्यारी सी चाची आ गई। चाची कैसी हैं आप, ठीक हैं? चाची आप तरह अपनी आवाज में ये मैसेज भेजे, इतने को मजे के आप मैसेज भेज रही होती, तो आपकी आवाज में जब सुनाओ तो अच्छा लगेगा। क्या कहती हैं आप? अच्छा भाई तानिया हसन आ गई। तानिया जी किथे रह गए हो तुसी? तानिया जी कह रही मैं जरा लेट हो गई, इतनी बिजी रहती है, इतनी बिजी हुई। क्या करती रहती, कोई चैनल वाले तुम्हारा, कोई रिपोर्टर हो क्या हो, हर जगह होती हो, खाने पे तुम हो, मोहल्ले में तुम्हारी शिरकत जरूरी होती है, हर खबर तुम्हारे पास होती है। तानिया जी क्या है चक्कर, रेस्ट क्या करो थोड़ा। चल जनाब। अच्छा जी, इसके अलावा पीर एम इलियास सरकार कैसे हैं, बड़े दिनों बाद। अच्छा कह रहे क्या अयाज भाई, आपको मोस्ट वेलकम, आई होप यू आर गुड और यू आर कराची हीरो। ओए होए, नहीं करें सरकार, कोई हीरो हीरो नहीं, मैं तो जीरो, बस आप लोगों की मोहब्बतें प्यार हैं, वरना क्या यार। गुड ओपनिंग, रोमांटिक प्ले कर दे, रोमांटिक क्या प्ले कर दू, मैं ऊपर से कूद जाऊं पैराशूट लेके, क्या रोमांटिक क्या सुनना चाहोगे तुम, मुंह में क्या वैसलीन लगा के बोलूं, क्या कैसे बोलूं मैं आप। चलो रोमांटिक की बात की तो ये वाला ट्रैक जो है ना, मैं आपको डेडिकेट करता हूं।

0: जना वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर। पीर एम अयाज फिर मैसेज कर रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग बोला था सॉरी जी अयाज भाई, थैंक्स आपका। अच्छा जी बन गया पीर साहब, आपका शो है, थैंक्स करने की जरूरत ही नहीं है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल करें सर, हाँ 3636 पर कोई मसला है, आज आप मेरे मैसेज रीड नहीं कर रहे। सारे तो पढ़ लिए बेटा, और कितने पढ़ने थे, जितने ये लास्ट मैसेज भी यही था जो मैंने पढ़ लिया, इतने सारे और मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी शामिल करना होता तो कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा मसला आप सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। अच्छा मेरी चाची क्या कह रही है, जरा चेक करें मेरी चाची क्या कह रही है।
1: सलाम अयाज, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से। सबसे पहले तो मेरा सलाम सबको, मेरे प्यारे मेरे जो लिसनर्स हैं सबको मेरा सलाम। ये कहना चाहूंगी कि हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं ना कि हम अपनी तकलीफ को कहते हैं कि ये आजमाइश है, और किसी और को तकलीफ हो उसकी तकलीफ देखते हैं तो कहते हैं कि ये उसके गुनाहों की सजा है। मुनाफ़त है या नहीं है?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: अयाज जीत हासिल करनी हो ना तो काबिलियत बढ़ाओ।
0: क्या बात है,
1: जीत हासिल करनी है चाहे गेम में हो चाहे जिंदगी में हो किसी भी शोबे में हो तो काबिलियत को बढ़ाना चाहिए। मैं अयाज नहीं बन सकती ना, बन सकती हूँ अगर मैं अपनी काबिलियत बढ़ाऊँ, वरना किस्मत की रोटी तो कुत्ते भी खा लेते हैं, उनको भी मिल जाती
0: है। यार सख्त स्टेटमेंट है लेकिन है बिल्कुल सही बात, बहुत आला। चाची जो है हमारी बहुत प्यारी सी क्यूट सी, और इसके अलावा तानिया हसन भी हमें सुन रही है। तानिया जी बिल्कुल आपका मैसेज भी जरा मैं ऑन एयर करता हूँ, लेकिन ये गाना मुझे याद आ गया, बहुत ही जबरदस्त ट्रैक था यारी।

0: वाह जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक। और ये जब भी इस तरह के मैं गाने सुनता हूँ कॉलेज याद आ जाता है, या कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स याद आ जाता है। कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स का जिक्र करते ही नादिया मलिक याद आ गई है और उनका मैसेज भी आ गया। कहाँ मसरूफ हो भैया? कोई एग्जीबिशन है, उसकी तैयारी कर रही है, यूके में कहीं हो रही है। और कौन से शो की बात करिए, कोई और कह रही सुने, लेकिन म्यूजिक सिलेक्शन जो है ना वो मेरे प्रोग्राम की उनको अच्छी लग रही है। दोस्त हूं ना मैं, भाई भी हूं तुम्हारा, इसलिए अच्छा लग रहा होगा, वरना उसके भी गौर से सुनो, अच्छा कर रहे, बहुत मेहनत करते हैं दूसरे आरजी भी। अच्छा जी सुंदरस क्या कह रही है भाई? कह रही होंशी, ये हमारी क्यूट सी चाची है भाई, बहुत ही जबरदस्त। और इसके अलावा तानिया जी क्या कह रहे हैं? तानिया जी इतने प्यार से मैसेज कर रही है कि बस मैं क्या बताऊं, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखें बस। अच्छा जी इसके अलावा हुमा जी कुछ कह रही है, हुमा जी क्या कह रही है? मोहब्बत है बिजनेस, थोड़ी है जो बदल लू, अरे पगली रुला देगी। बात वैसे सही की है, लेकिन आजकल लोग यही करते हैं, जो आजकल फैशन चल रहा है ये यही है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, ये बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा जनाब रोमांटिक पे हंस रही है माँ जमीन, में क्यों हंस रही हो तुम? ऐसा कौन सा हमने शगुफा छोड़ा? छोटी सी ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: Yummy. Enjoyable. Seven. Say that guy, crush on you. Yeah, yeah, yeah.

जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और अस्सलाम वालेकुम अय्याज भाई, मैं FM 100 कराची का पुराना लिसनर हूँ, 95 से सुन रहा हूँ, जब आसिफ गजाली शो करते थे। अरे क्या बात है जनाब, नाम लिखने में आपने बड़ा तकल्लुफ किया, लिख देते नाम भी पता चल जाता कि कौन है भाई इतना। अच्छा जी, नादिया मलिक कह रही है मेरी अपनी एग्जीबिशन है। अपनी एग्जीबिशन है फोटोग्राफी की। अच्छा जी, तैमूर ऑन सुनो रेडियो। अच्छा अच्छा, कोई और आरजे होंगे, वो भी अच्छा करता होगा, हर एक का अपना स्टाइल होता होगा, तो बेहतर कोई बात। और मिस्टर फारूक कह रही लवली सॉन्ग और इतनी तारीफें कर रही, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, खुश रहे आप। और इसके अलावा एंजेलिना आ गई, बिलावल तुम ठीक कह रहे हो, मैसेज रियली रीड नहीं किए जा, मुझे लग रहा है एक ही घर से आ रहे मैसेज, जो टच आया ना एक ही घर का है। मेरा मशवरा बिलावल, तुम मैसेज जरा कम किया करो। हाँ जी, मैं सारे पढ़े इनके, लेकिन पता नहीं इनका दिल चाह रहा कि बस 24 आवर इनका नाम लिया जाए, लेकिन अच्छा ये भी प्यार है इनका वैसे। और आज नेक्स्ट ट्रैक की जाने फिर बढ़ते हैं। और यार ये रॉक्सेट मेरे बड़े फेवरेट हैं, और इनके एक वक्त में मेरे पास सारे एल्बम

वजन आप सुन रहे हैं 100 द लुक रॉक जेट. सारे गाने अच्छे थे यार. मस्ट हैव बीन लव भी बहुत हिट हो गया था. प्रीटी वुमन मूवी की वजह से भी थी शायद उसमें. और इसके अलावा नादिया मलिक ने भी गाने बहुत सारे बता दिए. बॉन जोवी का ब्लेज ऑफ ग्लोरी, और ये यंग गन्स पार्ट टू मेरे ख्याल से मूवी थी, उसके सारे जो बॉन जोवी ने गाने गाए थे कमाल थे यार. सारे गाने, किस गाने की तारीफ करें और किसकी ना करें, बहुत ही हिट एल्बम था वो. और इसके अलावा जना पॉल यंग का भी जिक्र कर दिया है. ग्रूवी काइंड ऑफ लव. हो फिल कॉलिंस भी याद आ गया. यू बी 40 डोंट ब्रेक माय हार्ट. चलो जनाब, ये तो सारे गाने कमाल थे. अच्छा मैं इफ्तिखार अंसारी, अयाज भाई पाकिस्तान में FM 100 ने रेडियो का क्या जिद्दत दी और जो 90 सॉन्ग वो दौर याद दिला दिया था. हाँ ये बात वैसे आपकी बिल्कुल ठीक है. असल में इसलिए भी FM 100 क्योंकि पहला था चैनल, इसलिए भी ये क्रेडिट जो है वो FM 100 को जाता है, नो डाउट. उसके बाद और भी स्टेशन आए, वो उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया. तो तारीफ तो बनती है भैया. मिसेस फारू क्या कहने कह रहे, वाह जी वाह, क्या सॉन्ग प्ले किया. और गयासुद्दीन बलबन भी रॉकजेट के गाने नो डाउट भाई बहुत हिट है. तानिया जी हमें बड़े प्यार से सुकून से सुन रही है. तानिया जी को दिल कर रहा है ये वाला गाना थोड़ा सा मैं डेडिकेट कर दूं. अब पता नहीं बाहर तारे हैं, तारी भरी रातें हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं डेडिकेट.

हाय हाय क्या बात है भाई। आमिर सलीम सारे गाने अच्छे गाते थे, खास तौर पे दुखी गाने तो उन्होंने बड़े दिल से गाए। एक ये गाना भी याद आ गया, थोड़ा सा सुनाता हूँ, कमाल ट्रैक था ये भी।

हाय हाय हाय हाय। अच्छा नादिया कह रही है आपने और उसको दुखी गाना सुना दिया। क्या करूं, जो हालत इस वक्त चल रही थी ना, मैंने कहा यही सूट कर रहा है, बाकी तो सलूट कर रहे हैं बाकी सारे गाने। मैडम जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी मिसेस फारूक क्या कहने आप, इतना प्यार से इतनी मोहब्बत से मैसेज कर देती हैं, इतनी अप्रिशिएट करती हैं, थैंक्स अ लॉट। और मिसेस फारूक की एक बात बहुत मुझे पसंद है, बस चुपचाप शो सुनती रहती हैं और अप्रिशिएट करती रहती हैं। और हुमा जी के लिए जो है ना कहनी, अल्लाह पाक जो है इनके दिल को सुकून दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी यही, वरना ये गाना सुन के तो दिल का सुकून और जरा इधर उधर हो रहा है। अच्छा जी नाइस सॉन्ग सुपर शो, जरी और का भी मैसेज आ गया। नवीद कहने आज आपको छोटा भाई सुन रहा है, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। नवीद भाई बहुत शुक्रिया, छोटे भाई कैसे हो। इफ्तिखार अंसारी कहने आज भाई मैं ना आपसे पूछ रहा हूँ कि फेसबुक पे मैसेज कैसे करूँ। सर छो चार, फेसबुक हमने खत्म ही कर दी, उसमें फेस ही गलत आ रहे थे, हमने कहा बंद करो फेस को, तो फेसबुक बंद है, डायरेक्ट इस पर मैसेज करना 3636 पर। नाइस सॉन्ग, अगर एक हो जाए पंजाबी सॉन्ग तो पंजाबी है, वैसे थोड़ी देर में प्ले करता हूँ। वाह वाह क्या बात है यार, ये गाना वैसे बहुत ही जबरदस्त। हुमा जी गाना कैसा लग रहा है आपको? आए बस जो माँ जबीन है ना वो खुश हो रही है, कह रही क्या गाना लगा दिया। और शहजाद आज भी हिट है भाई, टाइम बड़ी स्पीड से गुजर रहा है। और तानिया जी जो है ना, बस तानिया खुश रहे, ये मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है बस लोगों की टेंशन ना लिया करें कभी, और जो लोगों की टेंशन लेता है वो हमेशा टेंशन में रहता है। अच्छा जी इसके अलावा आ गई है संजीदा, बेहतरीन सॉन्ग शहजाद राय का। आप तो भूल गए, मैं भूल गया। संजीदा तुम टू का टेबल हो, कौन हो तुम, जो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। आप मैसेज कर दिए, मैं उसी वक्त रिप्लाई कर देता हूँ फटाफट, तो ऐसा आप सोचे ही नहीं। अच्छा भाई सुंदस इतने प्यार से हमें सुन रही हैं, और सुंदस जी को भी तो गाना डेडिकेट करना है, कौन सा भला।

भाई जनाब सुन रहे हैं फ्रॉम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 पर। नादिया जी कहनी मेरी तारीफ, नादिया तुम्हारी कितनी तारीफें करता रहता हूँ, वो तो मिस्टर फारूक की भी तारीफ बनती है, जो होता है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। अच्छा जी अख्तर कह रहे हैं याद भाई आपने ना बिलावल भाई को नाराज कर दिया, बिलावल ना हुआ छुईमुई हो गई अनारकली हो गई, जो नाराज हो रही थोड़ी थोड़ी बात पे। बिलावल भाई ठीक हो जाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उनकी, इंशाल्लाह जल्द प्रोग्राम मेरे इसी तरह सुनते रहना तो दो चार दिनों में ठीक हो जाएंगे वो। नाइस सॉन्ग सुपर शो, जरीन का फिर मैसेज आ गया भाई, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब और सुंदर जी कह रही है दिस सॉन्ग ब्रिंग्स बैक ओल्ड मेमोरीज, मेमोरीज वाला ही तो शो है ये, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सुंदर जी, खुश रहे आप। और संजू क्या कह रही है, मैसेज लिखा नहीं जा रहा था खामोशी से सुनियो, बस इल्जाम मुझ पर डाल दिया ना कि भूल गया। आप मैसेज लिखेंगे तो हम आपको याद रखेंगे और जिक्र भी होता रहेगा और मिसेस फारूक खुश रहे। अच्छा जनाब एक मिनट की ब्रेक नजर आ रही, मिलते ब्रेक के बाद मैसेज करेंगे क्या चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636।

जनाब देखते देखते टाइम जो है वो इतनी जल्दी गुजर जाता है यार, वाकई में एफएम 100 पे टाइम का पता ही नहीं चलता। इमरान बी, बस नाम लिखा और कुछ भी नहीं लिखा कि क्या इमरान बी साहब कौन हो, सलाम दुआ कर लो थोड़ा, सिर्फ नाम लिखा अपना, क्या कहना चाह रहे हो यार। ये गाना भी अपने वक्त का और आज भी सुने बहुत अच्छा लगेगा, लेडी इन रेड, इस वक्त जो रेड में घूम रही है खवातीन, मेरी तरफ से उनके लिए थोड़ा सा सुनाऊंगा।

भाई जनाब, और जुपिटर्स ये बैंड था बहुत ही जबरदस्त बैंड, और इसमें सारी सिंगर थे, अली अजमत से लेके जवाद अहमद से लेके और पता नहीं कितने नाम भी मुझे कुछ के तो नहीं आते। अच्छा यार, ये भी एक बैंड था जादू, और इनका ये ट्रैक ओए होए होए, वैसे तो फोक गीत है ये, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल में गाया था।

खुद से भी मिला करें, सर उठा के चला करें। खुदा के तरीके हम नहीं समझ सकते, हम उससे क्या गिला करें। दुनिया संग दिल बनती मेरी दुश्मन, हम कम अज़ कम खुद से ही सुला करें। कम बोला करें, ज्यादा सुना करें, रब देता है माफी फिर गुना करें। ये ताकत ठिकाने बदल सकती, कलम की ताकत आफत भी पलट देती। लिखारी जान लेवा हूँ पर लिखाई ही रोज अब जीने का सबक देती। वरना जिंदगी मौके तो कम देती, महफिलों में तो रौनक भी हमसे थी। इधर हसल करते करते पूरा दिन गया, उर्दू रैप में उर्दू रैप मेरे दिन क्या। फैक्स नहीं फ्लैक्स नहीं, मुझे गालिब जैसा लिखने का फैज नहीं। वो हबीब है मेरे तो मुझसे दूर क्यों, वो हरीफ है मेरे तो उनकी खैर नहीं। आजकल भेजे मुझे टेक्स्ट अप व्हाट्सएप पे, वो नो ये व्हाट्सएप। मेरी जिंदगी कितनों की हसरत, मैं मिसाल मेरा नाम लेते मसलन। दिल फेंक के ना दिल तोड़, बिल बोर्ड पे अब दिखे शक्ल इनको। मेरा बैंक बैलेंस लगता था पिन कोड, अब सफर देख सिर्फ सिफर गिन तू। आई बिलोंग है, जाने का मूड नहीं है। हेडलाइनिज्म तेरी कोई न्यूज नहीं है, क्या वो सुनते पर करते महसूस नहीं है। वादे टूटे पर टूटे असूल नहीं है।

के कटे मेरे पर फिर भी जाने कैसे उड़ते, मुझे उड़ने दे, टूटे जो दिल वो आज जुड़ने दे, इन आंखों को खुशियों से भरने दे, अल्फाज मेरे दिल में उतरने दे, मंजिल तो खुश हो ठहरने पे, ये घर मेरा जड़ को ना मरने दे, उभरेंगे सूरज ये ढलने दे, वक्त लगे खुद को बदलने में।

कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं।

0: हमें अपनी ही मिट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: पानी नो परेशानी।
1: ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जमीन पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर।

0: 265.
1: FM 247 365.
2: ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जमीन पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर।

السلام عليكم. أيوة هو بنو باكستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो, डिफरेंट ट्रैक का टाइटल था, जिसको पसंद आ गया हो तो वो सुन सकता है बाद में भी, शो के अलावा भी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जाने, मगर उससे पहले सवाल तो हो जाए। आज का सवाल क्या है? सवाल कुछ ऐसा है कि नई टेक्नोलॉजी एक से एक आ रही है और ज्यादातर टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो रही है मोबाइल फोन्स में। जो नई टेक्नोलॉजी आती है वही उसी में। तो मोबाइल फोन पहले आए एंटीना के साथ, फिर उसके बाद छोटे छोटे एंटीनाज हो गए, फिर बगैर एंटीना के हो गए, फिर उसमें एक और टेक्नोलॉजी आई इंफ्रारेड, फिर उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आ गई ब्लूटूथ और ब्लूबेरी। मोबाइल में बहुत ज्यादा एरिक्सन मोबाइल ब्लूबेरी में ब्लूटूथ का सिलसिला कर, फिर उसके बाद ब्लूटूथ को सारे लोग भूल गए, एमएमएस आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि मोबाइल फोन में ही सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। पहले कैमरा आया, फिर फ्रंट कैमरा आया, सेल्फियां चलना शुरू हो गई। सेल्फियां रे सेल्फियां। और इस चक्कर में जब बहुत से लोग अपनी जान से गए सेल्फियों के चक्करों में, तो खैर जी आज का सवाल कुछ यूं है कि ब्लूटूथ कब ईजाद हुआ और किसने ईजाद किया, ये सवाल है आज का। और ब्लूटूथ आया वैसे मैं आपको बताऊं बहुत पहले से, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो अब बहुत ज्यादा है। मोबाइल फोन्स में देख लें आप, स्पीकर्स आ गए हैं जनाब, मोबाइल के थ्रू जो है स्पीकर में आप जो है ब्लूटूथ ऑन करके कनेक्ट करके और गाने सुने भरपूर तरीके से, बेतहाशा इसके फवायद हैं। तो ब्लूटूथ के हवाले से आज का सवाल है कि ब्लूटूथ किसने इजाद किया और कब किया, ये आपने मुझे बताना है। 3636 पर जनरल नॉलेज का सवाल है जनाब। ब्लूटूथ सब भी यूज करते होंगे लेकिन याद किसी को नहीं होगा। ये यार जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं किथो आई भाई, किथो आई, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले फीता काटा है जनाब हमारे प्यारे से यूसुफ भाई ने पापोश से, और एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम कर रहे हैं, आंटी चाची अरूसा गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स, इमरान भाई, खिताब गुल्लाला, उफरान भाई और आपके वालिद मोहतरम को सलाम, नदीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, खाकजादा एक नाम आया है, खाकजादा ओ लिखा हुआ है साथ में, एने सुने हो नदीम भाई कितना इंतजार करवाते हो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं दोनों एक ही बात है, और आई एम न्यू भाई, आपका नाम ही ऐसा है खाकजादा, बहुत बड़ा नाम है ये, और आपको वेलकम कहेंगे खाकजादा साहब। कब से सुन रहे हो ये भी तो बताओ, खामोशी कब तोड़ी, आज तोड़ी है वैसे तो। एनीवे तो वेलकम कहेंगे खाकजादा साहब को और इनको ट्रैक भी डेडिकेट करूंगा पक्का पक्का। और सलाम के बाद कह रहे हैं कैसे हैं भाई आप, अय्यूब लाला, संजीदा, अभी मुश्क, मानूर और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। एस गुल आ गई है आज, क्या बात है एनी जल्दी। और खाकजादा कह रहे हैं कि आप जो सॉन्ग प्ले करते हो उनसे अच्छा मुझे आपकी गुफ्तगू लगती है, लव यू नदीम भाई, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जरा नवाजी है भैया, हुस्न समात है, यानी कि आपके कान बहुत अच्छे हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना। ब्लूटूथ के हवाले से बताओ खाकजादा। और जनाब सनम हमारी प्यारी सी बहन आ गई है मुल्तान से, सबको मेरा सलाम नदीम भाई, दो दिन बीमार थी, हाय अल्लाह जी, मौसम चेंज हो रहा है, कोई अच्छा सा गाना या फिर मलकुदा चिंची वाला गाना प्ले करवा दे। मेहरबानी होगी सनम, मुल्तान तो सुन रही हो, तो गाना की फरमाइश भी जल्दी कर दिए तो चलेगा, जरूर सुनती रहो। और आपके लिए ढेर सारी दुआएं, न सिर्फ आपसे आपके लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जाहिर है अब ये जब मौसम चेंज होता है, खुसूसी तौर पर जब गर्मी से हम सर्दी की जानिब दाखिल हो रहे होते हैं, तब जो है तबीयतें ज्यादा खराब होती हैं, और इवन जब सर्दी से गर्मी की जानिब मौसम गामजन होता है तब भी ये सिलसिलाकार होता है। तो अब जाहिर है मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, खुसूसी तौर पर पंजाब में,
तो इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपको भी सनम सेहतियाबी अता फरमाए और तमाम लोगों को भी महफूज रखे, यानी कि समझ रही है ना आप। वैसे कराची में भी कुछ सिलसिलाकार ऐसा फील एम ही आ रही है मुझे, रात को लेट नाइट हल्की फुल्की सी खुनकी होती है, और अगर आप क्लिफ्टन डिफेंस की साइड चले जाएं समंदर के पास तो आपको ज्यादा महसूस होता है, यानी कि समझ रहे हैं ना। अयूब अफरीदी आ गए हैं, करें जाने जिगर, खुश रहें सलामत रहें जिगर आपको, एस गुल को, मुश्क को, एच गुल को और तमाम प्यारे प्यारे सुनने वालों को प्यार भरा सलाम वालेकुम अस्सलाम। और शहजादी महना भी आ गई, जरीन नूर कहती है सलाम कैसे हैं और वाले साहब कैसे हैं, संजू को दुआ और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में हैं जी। और इमाम बख्श सयाल साहब टंडो जाम से भी आ गए हैं और एक फरमाइश लेकर आए, मेरा ख्याल है इंतजार दिल बेकरार आपके शो के लिए, अच्छा शो के लिए और प्लीज बले साई सिंधी ट्रैक साई जरूर चलाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है खाकजादा साहब को हम एक ट्रैक डेडिकेट करते हैं और नया ट्रैक डेडिकेट करते हैं। वैसे ट्रैक तो पुराना है मगर फ्रीमिक्स हुआ है, एलो फड़ो।

वेलकम बैक गएंगे वीक तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया चो होर की लिया और जनाब उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रैक पसंद आया होगा। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब आ गए हैं कहते हैं वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सजाद अली या नूर जहान की आवाज में कोई सॉन्ग सुनना चाह रहे थे और पेश की शुक्रिया भी अदा किया है नसीम कुरैशी साहब समी शेख अयूब आफरीदी इख्दाकुल्ला इमरान रियाज और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम जावेद साहब की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम हर लम्हा दुआ गो ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफ बी एरिया कराची से। और जनाब गुजर खान तो आगे ने हमारे प्यारे से भाई मिर्जा शुजात सलाम के बाद कह रहे नदीम भाई तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब वेलकम खुशामदीद। उन प्यारी समातों को पूरे गुजर खान की इस ठंडी रात का सलाम जो आज खामोशी से आपका शो सुन रही है। वाह वाह वेख तेरा प्यार मैंने मिलिया पसंद आया उनको शुक्रिया जनाब गाने सारे तुम्हें पसंद आ गया डोंट वरी डोंट वरी। प्यारी जी बहना नौरीन तौसीफ फैसलाबाद से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे मिजाज हैं ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए। वाह वाह वाह वाह वाह वाह अच्छा मेरी बहन आपको इतनी नॉलेज कैसे पहले ये बताइए आप और चाची हर सवाल का जवाब फौरन दे देती चाची ने भी जवाब दे चुकी है चाची और नौरीन तौसीफ ने भी दे दिया। मेरी रूहे जहां को उर्दू सॉन्ग ज्यादा पसंद है आज आपने अपनी तरफ से रूहे मन को जरूर सॉन्ग डेडिकेट करना है। और जी बिल्कुल जी हाजिर जनाब हाजिर। और हमारी द ग्रेट चाची हाय हाय चाची तो इंसाइक्लोपीडिया है पूरी तफसील वाह वाह चाची वैसे आप आरजे बन जाए यकीन माने ओके ठीक। नदीम भाई अगर हो सके तो लाला के लिए अच्छा सा पख्तो संदरा चला दीजिएगा इस गोल के लिए ओके आप बताओ पख्तो का कौन सा संदरा चलाए आपकी जानिब से चलाऊं ना तो फिर चलाएंगे उसी हिसाब से चलाएंगे। और नदीम भाई पंजाबी सॉन्ग अच्छा था बहुत एस गुल ही कह रही है और खाकजादा साहब कह रहे हैं जियो एन एस होने क्या बात है आपकी थैंक यू बट अभी इंतजार में हैं दुआ करो मिल जाए। वीक तेरा प्यार मिन मिलिया अभी इंतजार में इस प्यार के इंतजार में गाने के हवाले से कह रहे हैं कल के मेरे आशार आपने बहुत अच्छे पढ़े मुझे अच्छा लगा भाई जरी मोर कह रही है आई सो स्वीट मेरी प्यारी सी बहन। देखिए आप लोग जो आशार भेजते हैं ना जिस मोहब्बत और प्यार से भेजते हैं ठीक है तो उसको मैं उसी मोहब्बत और प्यार से पढ़ता हूँ उसकी वजह है मुझे पता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं दिल से भेजते हैं मेरी प्यारी सी बहन शुक्रिया कि आपको अच्छा लगा और आई लव यू नदीम भाई आई लव यू अयूब लाला एस गुल कह रही है जीते रहो मौसखोरा थे रहो। भैया अभी हमारी एक और बहुत ही मुल्तानो तबीयत भी खराब है नजला जुकाम भी है नजला जुकाम होता है ना जब एन तो आप सबको पता ही है कैसी कैफियत होती है आंखें बंद हो रही होती है सुनते सुनते आदमी सो भी जाए तो इससे पहले कि ये सो जाए इनको फौरन से पेशतर सनम को जो है मुल्तान वाली सनम हमारी उनको चिंची पे बिठा देते हैं और चिंची पे बिठाने वाले जो हैं वो मलकू हैं

Welcome back, 소녀. 칭칭 रक्षा बैग के मियां वाली तो आई हैं, क्या बात है भाई। वैसे आप तो मुल्तान में हैं सनम, मुल्तान और मियां वाली का फासला था। खैर जी, इस तरह जो होता है इस तरह के गांवों में। आ रहे हैं जनाब आपके मैसेजेस मेरे सामने। और इसगुल कहती है, नदीम भाई अगर शाह फारूक का, अभी तो शाह फारूक बहुत देर में बताया आपने, आपके लिए गाना निकाल लिया, वो आपकी जानिब से ही डेडिकेट करूंगा, डोंट वरी। ये तो बहुत मुश्किल है, और लग जाए तो क्या बात है। लाला के लिए तो जीबीएन गुलबानो पुफो खुश हो जाएगी। पुफो नहीं कहो यार, वो मेरी प्यारी सी बहन, बहुत अच्छी सी, छोटी सी है, बहुत छोटी सी, आपकी बड़ी बाजी, बड़ी बड़ी बाजी बोल दो। पुफो नहीं, पुफो की करेक्टर होते हैं बिल्कुल जबरदस्त किस्म के। पुफो बस, अगर बहुत सारी पुफो हैं उनमें एक पुफो फिर सब पर भारी होती है। अच्छा भाई, एक साहब बिरयानी की दुकान आते हैं और कहते हैं कि भाई गधे की गोश्त की बिरयानी खाने को मिली। दुकानदार उसको गौर से देखता है, जवाब देता है कि खरीद है भाईजान। कह रहे क्यों? कह रहे आज आप अपने ही गोश्त की बिरयानी खाना चाह रहे हैं। साहिबजादा साहब का मैसेज है, ये चुटकुला था जबरदस्त। खाकजादा साहब कह रहे हैं, इन्हें सुने शो के एंड में बताए देना किस टाइम शो करोगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी भाई, समझ रहे हैं जी, ते हैं जी। मैं दिल तो चाह रहा था कि मैं भी बता दूं, लेकिन अब नहीं बताऊंगा, अब आखिर में ही बताऊंगा। वजह पूछो ताकि आखिर तक तुम साथ रहो भाई। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है? अच्छा, ये सवाल पूछ लिया सलीम मेमन साहब, पहले इसका जवाब बताओ फिर मैं आपका ये सवाल पढ़ूंगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप? समझा करो, कोशिश किया करो जूम आए जो है वो सवालात ना हो। और हमारे मिर्जा साहब कह रहे हैं, जियो मलगूब ले ले शानदार आगाजी शो, जबरदस्त लाजवाब। नदीम भाई माशाल्लाह से आप खूबसूरत, आपका शो लाजवाब, आपके लिसनर कमाल, कमाल के हैं, जमाल के हैं, शुक्रिया। अब्बास भाई भी आ गए हैं तारिक रोड वाले, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, और ट्रैक बड़े जबरदस्त लग रहे हैं नदीम भाई, क्या बात है, और मजा आ रहा है उनको बेहतरीन, और कह रहे हैं कि समी को एक ट्रैक डेडिकेट कर दीजिएगा। हैं जी, ते हैं जी, कर देंगे जनाब। भाई अगर मैंने मैसेज जो है वो सही पढ़े हैं आपके, तो जरा एक इसी तरीके से जो आप ना हाथ बनाकर भेजते ना, ओके टेक वाला, वो भेज दो। हाँ, पहले से भेज दिया, इसको ना सही पढ़ रहा हूँ मैं, देख लो ना हमारा दिमाग कितना मिल रहा है। अब्बास भाई, यानी कि समझ रहे हैं ना आप? अच्छा जी, सॉरी नदीम भाई, अब पुप्पो नहीं कहूंगी। एस गुल, अरे नहीं मेरा बच्चा, ये नहीं बोला करो, मैं बड़ा भाई हूं ना, मैं समझाऊंगा अपनी बहन को। जीबीएन बाजी बोल दिया, जीबीएन। हाँ वैसे हमारी प्यारी सी ये लिसनर जो है ये गायब हो चुकी है, पता नहीं क्यों नाराज हैं शायद, तो आ जाओ जीबीएन, आ जाओ कुछ इस तरह से आओ। ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट कर रहे हैं एसगुल की जानिब से अयूब लाला को, और जीबीएन को भी हम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी जानिब से। एल्लो फड़ो।

Welcome back! Vamina Mina Maratha Gura. Beautiful track. कैसा लगा इस गोल बताना जरूर. मैसेजेस आ रहे हैं आपके 3636 पर. सवाल मैंने आज आपसे ये किया है कि ब्लूटूथ कब इजाद हुआ और किसने इजाद किया, ये बताना है आपने. और अब मैसेजेस की जानब चलते हैं आपके और देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं. अच्छा जी इमाम बख्श, मैं देख रहा हूँ कोई मैसेज मिस ना हुआ घुमा फिरा के. और जनाब मेरा ख्याल है अभी तक तो ऑलमोस्ट सभी मैसेज पढ़े हैं मैंने.

अच्छा जनाब, लास्ट मैसेज था हमारे प्यारे से सलीम भाई का, सलीम अरुण भाई का, और सॉरी सलीम भाई ये भी हो गया था। और साहिबजादा साहब ने एक और लतीफे टाइप की चीज मेरे ख्याल है कोई भेजी है और काफी तवील है, ये हम पढ़ते हैं। पहले छोटे छोटे से मैसेजेस पढ़ लें। वही बाबा आपको और सबको सलाम मेरा, सलीम मीमन भाई कह रहे हैं, सही भली कराया उन्होंने, सही भली कराया। और जनाब जनाब जनाब, अच्छा भाई शो अच्छा लग रहा है, तारीफें हो रही हैं हर तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन साहब ने भी शुक्रिया अदा कर दिया है कि प्रोग्राम में आपने मेरे मैसेज को शामिल किया, बहुत सारी दुआएं दी हैं, थैंक यू। आपके लिए भी गाना भी चलाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। एक नवाब साहब जो है, नवाब साहब की हवेली में खाना चल रहा था, नवाब साहब की नजर एक नौकर पर पड़ती है जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। नवाब साहब उसे बुलाते हैं और उससे रोने की वजह मालूम करते हैं। वो बताता है, मेरा ताल्लुक भी एक अमीर घर से था, आज मैं इन हालों को हूं। नवाब साहब सवाल करते हैं, बताओ मुर्गी की सबसे मजेदार चीज क्या होती है? वो जवाब देता है कि उसकी खाल। नवाब समझ जाते हैं, तुम हमारे साथ बैठकर खाना तनावल करो। करीब खड़े एक और मुलाजिम ये सब देख रहा होता है। दूसरे दिन वो भी वही ड्रामा करते हैं, नवाब साहब उनसे भी सवाल करते हैं कि तुम बताओ कि बकरे की सबसे लजीज चीज क्या होती है? वो जवाब देता है कि उसकी खाल। नवाब साहब अपने नौकरों को हुक्म देते हैं कि इसको जूते मार मारकर हवेली से बाहर निकाल दो। साहिबजादा साहब यहां हंसना कहां था पहले ये बताइए, समझ से बाहर है भाई, ये मैं समझा नहीं, जो लोग समझे हैं वो हंसे, यानी कि समझ रहे ना। प्यारी सी चाची कहती है कि हाय मिसिंग चाचा एंड अजरा शब्बीर को उन्होंने ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा है, जरूर करेंगे। और चाची आपने जो एक और इख्तिबास भेजा है ये सियासी है, ये हम पढ़ नहीं सकते। मिर्जा साहब कहते हैं, नदीम भाई मुन्ना मुन्ना का क्या मतलब है? दो छोटे बच्चे, एक मुन्ना दूसरा मुन्ना, मुन्ना मुन्ना यानी कि समझ गए ना। अच्छा मीना मीना तो नहीं पूछ रहे कहीं गाने का? मीना का मतलब होता है प्यार मोहब्बत, कि वो कह रही है कि प्यार से मेरी तरफ देखो, पमीना मीना पमत गोरा, कि मुझे अपनी प्यार भरी नजरों से देखो, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अयूब लाला और एसगुल तुम बताओ हमने इसका ट्रांसलेशन सही किया या नहीं किया, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा भाई हमारे प्यारे से इमाम बख्श साहब ने एक फरमाइश की थी, तो उनकी फरमाइश की जानिब भी जाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि अभी फौरन से पेशतर आप लोगों की फरमाइशें जो है ना मगर लादा, उस तो बाद अपनी मर्जी के चलाओ। तो ये जनाब एक बहुत ही प्यारा सा सिंधी ट्रैक है, ये हमारे इमाम बख्श साहब ने इसकी फरमाइश की थी, तो एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक। या तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, ब्यूटीफुल ट्रैक, और उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। चाची गाना नहीं मिल रहा, जो फरमाइश की हुई है, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। हाँ, चाची ने इस पर कुछ कहा है, नौरीन बहना ने भेजा था ना वो नाकाम इश्क और कामयाब इश्क के हवाले से, तो उसमें कहा है कि तुम पसंद आए ये इत्तफाक था, तुम ही पसंद रहे रह गए ये इश्क है। हाय हाय हाय हाय, क्या बात है, ये तो डेफिनेशन बता दी चाची आपने इश्क और मोहब्बत की, भाई क्या बात है। अरे भाई बड़े बड़े लोग आ गए, मुश्क आ गई है, कह रही अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, क्या हाल है, सब फैमिली को आदाब, बेस्ट सॉन्ग याद तो आती होगी, गुड शो, क्या हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है जनाब, एक फरमाइश आई है, मुश्क कितने दिनों के बाद आई हो और तुम्हारी फरमाइश पूरी ना हो, ये कैसे हो सकता है, हैं जी जी हैं जी। और बिल्कुल आपको ट्रैक डेडिकेट करेंगे, बल्कि हम ये मुश्क का नाम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। और कहती है हाय हाय खलील जबरान और मीजाद, मोहब्बत की अलामत है। जबरान साहब का ये वाकया, अच्छा खलील जबरान थे कौन, मैं इनका ये वाकया तो पढ़ रहा हूँ, आप सबको पता है कि खलील जबरान कुछ थे कोई थे, खैर पहले इनका वाकया पढ़ लेते हैं, अगर किसी को मालूम हो तो बताएं, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। कहते हैं कि ये उर्दू रस्मुल खत में जो जेर जबर पेश का बड़ा मसला होता है। कहते हैं कि उन्होंने खत में लिखा जबरान साहब ने कि तुम एक ख्याल की मानिंद हो जो मेरे दिल में रहता है, कभी गायब नहीं होता, कभी पूरी तरह समझ नहीं आता। मीजादा ने जवाब दिया, तुम मेरी तन्हाई की बाजगश्त हो, मेरी रूह के सफर के हम सफर हो। ये मकालमे जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी कर्ब की अलामत है, ऐसी कुर्बत जिसमें खामोशी भूलती है और फासले मिट जाते हैं। भाई इनकी मोहब्बत की दास्तान भी ऐसी है कि एक दूसरे को देखा भी नहीं था, खतो किताबत में ही इश्क हो गया था। मुश कहां से ढूंढ के लाई हो, हैं जी ते हैं जी। और मिर्जा साहब की कहने पे ने हाय अल्लाह जी, नौरीन बहना ने तो शादीशुदा हजरात का पूरा मेन्यू कार्ड शो कर दिया बड़ा समझने वाला था भाई ये, अब मैं कभी भी नहीं बोलूंगा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांगे और कहते हैं क्या कहने हैं, क्या सॉन्ग प्ले किया सज्जाद अली का, रूह में मौसीकी को समा लेने वालों में से एक नाम सज्जाद अली साहब का भी है, लाजवाब लाजवाब, बेशक क्या बात है यार, उन्होंने या तकरीबन 30-40 साल 40-50 साल राज किया है भाई इस बंदे ने। अब्बास भाई भी कुछ कह रहे हैं, अच्छा भाई बहुत सारी दुआएं दी हैं उन्होंने हमारी अरूसा बहन के लिए अब्बास भाई ने, और सॉन्ग बिल्कुल चलेगा जनाब, आप डोंट वरी। और भाई हाँ देखो मुझे उम्मीद थी कि चाची की जानिब से या नौरीन तौसीफ बहना की जानिब से खलील जबरान के हवाले से कुछ ना कुछ आएगा, और खलील जबरान लबनानी नजाद अमेरिकी शायर मुसन्निफ फलसफी और मुसव्विर थे, वो अपनी मशहूर किताब अल नबी यानी द प्रॉफिट की वजह से दुनिया भर में मारूफ हुए, उनका ताल्लुक 1883 से 1931 तक के दौर से था। क्या बात है, खलील जबरान साहब के जो फलसफे हैं और मतलब वो कमाल के यार, कमाल के, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा इनको,
और इनकी बहुत लंबी दास्तान है, जाहिर है 18वीं सदी से 19वीं सदी तक। और जनाब यार मेरा गला खाशक हो रहा है, इसी बात पर मैं एक गाने की जानिब जा रहा हूँ और आपको ये ट्रैक डेडिकेट कर रहा हूँ जनाब। एस गुल, एस गुल, एच गुल और मुश्क भी आई हुई है, तो इन तीनों को ये ट्रैक डेडिकेट हो रहा है अय्यूब आफरीदी लाला की जानिब से। हेलो फटो

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो सागी दे आई होप कि लाला को पसंद आया होगा गाना और एच गर्ल एस गर्ल मश को भी पसंद आया होगा। पढ़ते हैं आपकी मैसेजेस की जाने कोई भी सॉन्ग एक अच्छा ही तो हो गया था। और हमारे नासिर खान साहब कह रहे हैं गुलबानों के बारे में उन्होंने मैसेज किया है कि बता रहे हैं कि एक पश्तो शो सुनती हैं किसी दूसरे चैनल पर। सही जा रहे हैं यार नासिर भाई फुल फॉलो कर रहे हैं आप चले अच्छी बात है जीती रहे मुस्कुराती रहे शाद रहे आबाद रहे हमारी दुआएं हैं यार उनके लिए हमेशा। और नाकाम आशिक हम जानते हैं और जीबीएन और कामयाब आशिक का ठीक पता है समी भाई को और सलीम भाई को होगा। भाई कामयाब आशिक है भाई सही कह रहे हैं आप। अयूब लाला का मैसेज है ये। और जनाब रिजवान साहब आ गए फिर और कह रहे हैं नदीम भाई मैं रिजवान हूँ आपका शो बहुत ही अच्छा होता है आप सदा खुश रहें और भाई आपका गाना जरूर चलेगा जब आपको कह दिया है सुने हो तो चलाएंगे तो आज जरूर चलाएंगे आप बस सुनते रहें। अनीश शहजादा भी आ गया है आपको भी हम शहजादा इसलिए कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आए तो कहते हैं सलाम है भाई कैसे हैं आप और तमाम सामाईन को उन्होंने सलाम कहा है वालेकुम अस्सलाम। और अरूसा मेमन को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन सुम आमीन सलीम मेमन कह रहे हैं। और जनाब खुश आमदीद मुश्क कैसी हैं आप ये एस गुल कह रही हैं मुश्क। और नवीद भाई कह रहे हैं आपका छोटा भाई और नदीम भाई अब्बास अच्छा जी एक फरमाइश कर दी उन्होंने इतनी जल्दी की जब शुरू में आपने मुझे मैसेज किया था उस वक्त कर देते चला देंगे देखेंगे वक्त हुआ तो जरूर चलाएंगे। वैसे तो अब तो नालों नाल सबकी फरमाइशें पूरी कर रहा हूं मैं। और अनीस भाई को शो बहुत अच्छा लग रहा है और चाची को और नौरीन बहन को बहुत अच्छी नॉलेज है और वो हमें नॉलेज हम तक पहुंचा रही हैं। और आज तो मुश्क गुड़िया भी आ गई हैं जी बिल्कुल। सोहेल खान कह रहे हैं सर मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को कोई सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। सोहेल भाई हम आपको कर रहे थे यार चले अब जो गाना मैं आपको डेडिकेट करूंगा वो आपकी जानिब से यानी कि समझ रहे हैं ना सबको डेडिकेट कर देंगे। नौरीन भैना के भी मैसेज आए हुए हैं क्या कह रही हैं अरूसा मेमन के लिए बेशुमार दुआएं और सेहतयाबी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए आमीन सुम आमीन। नदीम भाई अपनी रूह मन को अपनी तरफ से अच्छा सा उर्दू सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। अब अपनी तरफ से क्या करूं है ना देख रही हैं आप फरमाइशों की कितनी भरमार है हमने गाना निकाला हुआ है रूह मन के लिए डोंट वरी और उसके साथ ही उनको कुछ पढ़ के भी सुनाएंगे हम यानी कि समझ रही हैं ना। लाला कहते हैं जिगर थैंक यू बेहतरीन सॉन्ग प्ले कर दिया आपने। अरे लाला थैंक यू नहीं बोला करें यानी कि समझ रहे ना। और नदीम चाची ये गाना जो आपने लिखा है ना यकीन माने मैं ढूंढ रहा हूं जब गाना चल रहा होता ना तो मैं ये गाना ढूंढ रहा होता हूं मिलेगा तो 100% चलेगा। हाँ चाची कह रही आजकल सिर्फ स्टेटस है ना जो अच्छा नहीं स्टेटस से आगे क्या लिखा हुआ मेरी समझ में नहीं आया रब्त नहीं बन रहा कुछ बात का। चले इसी बात पर हम जाएंगे जनाब एक और ट्रैक की जानिब और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे मुश्क की जानिब से सबको समर जाफरी की का ट्रैक है एलो फड़ो।
1: So why don't you just say that you love me?

ये तुम समर जाफरी का ट्रैक है, बहुत जबरदस्त। और चाची वो ट्रैक नहीं चलेगा, मैं नूरा लाल समझ रहा था, लेकिन नूरा लाल नहीं, वो पड़ोसी मुल्क की नूरा है। तो ये गाना जो है ये पाकिस्तानी कंटेंट नहीं है, लिहाजा हम कोई दूसरा कंटेंट चला देंगे हमारी प्यारी सी अजरा शब्बीर जी के लिए। मुश्क आ गई है लगता है, संजू भी आ जाएंगी, यार आ रही है जरीनूर, अभी उनको एक गाना डेडिकेट होने वाला है, तो वो फिर आपकी जानिब से, हमारी प्यारी सी नौरीन तौसीफ की जानिब से, अदीला की जानिब से भी करेंगे। अदीला भी गायब हुई हुई है आप, यानी कि समझ रहे हैं ना, हमारी अदीला बहना। और भाई चाची को सलाम कहा है हमारे प्यारे से अब्बास भाई ने, तारिक रोड वाले, और कैसी हैं चाची आप, ठीक ठाक हैं? सॉन्ग ओके जनाब, डेडिकेट होगा समी को, आप बेफिक्र रहे हैं अब्बास भाई, आप लोगों के मैसेजेस सारे मुझे याद हैं और आप लोगों की सारी फरमाइशें भी मुझे याद हैं, डॉट वरी डॉट वरी, फरमाइशें मैंने पूरी करनी है। और रूहे जान नौरीन तौसीफ बहन की और हमारी रूहे मन, इनको हम ट्रैक बाद में डेडिकेट करें, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रिजवान साहब जो हैं, ये भी हमारे नए लिसनर, कल भी इन्होंने फरमाइश की थी तो कल के शो में तो चली नहीं सकती थी, तो आज के शो में हम इनकी फरमाइश को पूरा कर रहे हैं। हेलो फड़ो रिजवान साहब।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। ब्यूटीफुल ट्रैक भाई, दिले हमें नुसरत साहब की है तो खैर सारे ही जाने हैं ए वन हो गए। खैर जी, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया हुआ है उन सबको कहेंगे थैंक यू, और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बताएंगे कि मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक। वक्त तेजी से गुजर रहा है, अभी तक आपकी फरमाइशें खत्म नहीं हुई। कुछ गाने चलाना चाह रहा था मैं, खैर लेकिन आप लोगों का दिल भी तो रखना है ना। हमारे अब्बास भाई कह रहे हैं मलका तरन्नम नूर जहान का हो जाए तो क्या बात है भाई, हो जाएगा। और अलीमुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा शुक्रिया अदा किया। और अयूब लाला, शादी से पहले हर मर्द आशिक होता है और शादी के बाद मजलूम, सलीम मेमन कह रहे हैं। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ सलीम मेमन साहब, अयूब लाला शादी से पहले जैसे थे शादी के बाद भी वैसे ही हैं। मजलूम आप हैं। अच्छा भाई, एक और मैसेज आया है सलमान खान है मेरा ख्याल है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके मैसेज का। और सलाम मैंने भाई, कैसे हैं आप स्वीट अयूब लाला, मुझको मेरा प्यार भरा सलाम कहिएगा। एच गुल, इतनी देर से आई हो, किधर गायब थी, जरा दसो तो सही। हैं जी जी हैं जी। और नौरीन बहना ने कुछ भेजा था अपने रूहे जान के लिए, तो उसको जरा शामिल करते हैं शो में और उसके बाद फिर गाना। वो अपनी रूहे जान को कहती है रूहे मन, चांद की रोशनी तुम्हारा नाम जब मेरे दिल की दहलीज पर उतरता है तो हर बेचैन लम्हा सुकून की चादर ओढ़ लेता है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल की पहली रोशनी है और तुम्हारी आवाज मेरी शाम का सबसे खूबसूरत एहसास। तुम मेरे ख्यालों में नहीं, मेरे हर एहसास में रहते हो। मोहब्बत को लफ्जों में समेटा जा सकता है, समेटा जा सकता तो हर लफ्ज पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिखती। रूहे मन, चांद की रोशनी, जानान, तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब हो। रूहे जान, रूहे मन, तुम्हारे लिए एलो पढ़ो।

Welcome back. 화답변 화미리안 Beautiful track. उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा. एने भाई देर से मैसेज इसलिए किया कि सो गई थी, शो देर से सुनना शुरू किया. आज एच गुल कह रही है तो मेरी प्यारी सी बहना नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने मिस कर दिया. आपको गाना डेडिकेट किया था अयो बाप प्रीति भाई, यानी कि समझ रही है ना. तो और मुश्क कहाँ गायब हो गई, मुश्क गाना हमने चलाया तुम्हारे लिए समर जाफरी का और गायब हो गई आप. आदमी वैसे ही कह देता है थैंक यू, मगर यानी कि समझ रही है ना आप. अच्छा जनाब, ब्लूटूथ के हवाले से मैंने आपसे एक सवाल किया हुआ है और सवाल कुछ यूं है कि आपने ये बताना है कि ब्लूटूथ कब इजाद हुआ और किसने इजाद किया, ये बताना था. और इसके वैसे बहुत सारे जवाब आ रहे हैं और मैंने भी आपको जवाब देना है. वैसे सिर्फ और सिर्फ दो लोगों ने सही जवाब दिया है और उन्होंने ही पार्टिसिपेट भी किया है, हैं जी, हमारी प्यारी सी चाची और नौरीन मेहना. बाकी सारे खामोश हुए. इन्होंने भाई आप लोग बताएं तो ब्लूटूथ यूज नहीं करते आप लोग, करते होंगे जाहिर है जरूर करते होंगे, मगर उसके बारे में नहीं बता रहे आपके भाई, और नहीं बता रहे तो क्यों नहीं बता रहे. और लाला कहते हैं कि जिगर सलीम भाई को आपने बिल्कुल सच बताया. दिल खुश कर दिया आपने मेरा, दासियों का ना यार. इस तरह तो होता है ना भाई, जो मैं जानता हूँ वो बोलती है. और वैसे इंसान को होना भी ऐसा ही चाहिए. ये सिर्फ अय्यूब आफरीदी साहब के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, सलीम भाई आप भी, सलीम मेमन भाई, ये मजलूम बनने की जरूरत नहीं है. मजलूम क्यों बनते हैं वैसे, मैं मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा है भाई, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग. कहा जाता है ना कि मजलूम बना भाई, क्यों बनते हो मजलूम, मत बनो यार. हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत होते हैं तो आप जो है सॉरी करने में कोई अर्ज नहीं, और सामने वाला अगर गलत है तब भी आप सॉरी कर रहे हैं. कैसी है सलीम भाई आप. खैर इस तरह तो होता है, इस तरह के सभी भी गायब है, जाहिर है वो होने वाला दूल्हा है. और एक हमारे और न्याजी साहब है, वो तो पाक आर्मी से ताल्लुक है, उनकी भी शादी होने वाली है, वो भी गायब है. लेकिन खैर जनाब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. अच्छा भाई हमारे सलीम मेमन साहब के हमने इतने सारे मैसेज पढ़े हैं तो सलीम मेमन साहब ने फरमाइश भी एक की थी, बल्कि फरमाइश नहीं की थी, डेडिकेशन भी थी फरमाइश भी थी. और उन्होंने कहा था कि भाई हुजैफा साहब जो हैं वो सुन रहे हैं, हुजैफा को डेडिकेट कीजिएगा. और किस किस का कहा था भाई, दो तीन नाम और भी लिए थे इन्होंने. और नवीद भाई का कहा था इन्होंने कि नवीद भाई को ट्रैक डेडिकेट कर दीजिएगा, हुजैफा को कर दीजिएगा, और अच्छा जी बस ये दो ही कहना, आसिफ, हुजैफा आसिफ और लाला को भी डेडिकेट करने के लिए कहा था. तो भाई इन्होंने कहा था कि अली जफर का ट्रैक चला दें, तो अली जफर का ट्रैक आप सबके लिए सलीम मेहमान की जानिब से चल पड़ भाई.

वेलकम बैक कहेंगे और बालो बतियां हमने सुना और उम्मीद करता हूं कि सबने बतियां बाल दी होंगी। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा जनाब, नाकाम आशिक हम जानते हैं और कामयाब आशिक का भी पता है। और सलीम भाई, भाई अपना नाम नहीं लिखा आपने, ये क्या बात है भाई, अपना नाम तो लिखिए। और जनाब हमारे साहबजादा साहब ने फिर एक तवील मैसेज भेज दिया है, कहते हैं एक पार्टी में जाना हुआ, एमएम आलम साहब भी मौजूद थे। लोग उनसे पूछ रहे थे, सर आपने कारनामा कैसे किया? वो बोले, मुझे याद नहीं आ रहा, पुरानी बात है, शायद मैंने मिसाइल मारे थे। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर, आपका जहाज था F-86 साइबर जेट, उसमें मिसाइल सिस्टम नहीं होता था, उसमें बम होते थे, रॉकेट्स और 2 मिनट्स का बुलेट राउंड। इंडियन जहाजों से मिस्टेक ये हुई, आपके जहाज के सामने इनलाइन हो गए थे, जिसका एडवांटेज आपने लिया और बुलेट्स राउंड खोल दिया और बुलेट्स ने 1x1 5 जहाज गिरा दिए। एमएम आलम साहब ने मुझे गले लगा लिया। साहिबजादा साहब बहुत खूबसूरत इक्तिबास और नॉलेजेबल, एमएम आलम साहब क्या बात है। और ये इक्तिबास है, ये भी जहन में रखिएगा, साहिबजादा साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको बयान किया, हमारे 1965 की जंग, मेरा ख्याल है 65 की जंग में था। और जनाब इनके बाद आगे बढ़ते हैं, रिजवान साहब कह रहे हैं, दिल खुश कर दीजिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया, अम्मी के लिए दुआ कर दीजिएगा, वो अपना कदमों में अच्छा, अम्मी के लिए दुआ कर। भाई रिजवान की वालदा के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, उनकी बैकबोन में जो है वो पेन है, जिसकी वजह से वो अभी खड़ी नहीं हो सकती, चलने फिरने में उनको तकलीफ है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सबकी दुआ है भाई। और जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन कहती है, सवाल का जवाब है, बल्कि अभी जवाब भी दे देंगे इनके इस जवाब से, कि ब्लूटूथ अर्ली 90s में इजाद हुआ था, 96 में बना दानिश किंग नाम, अच्छा अच्छा खैर आप छोड़ें, आपके इस जवाब को हम नहीं पढ़ते, बल्कि हम आपको जवाब देते हैं इसका, ब्लूटूथ के हवाले से, कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की जो बुनियाद है वो 1994 में हुई थी। वैसे किसी ने इसका जवाब दुरुस्त नहीं दिया, लेकिन थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर, कम से कम पार्टिसिपेट तो किया ना, और अर्ली 90s की बात जो इन्होंने की वो भी दुरुस्त की, 94 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। और ब्लूटूथ, मैंने ये सवाल किया था कि किसने इजाद किया था, तो ब्लूटूथ की इजाद जो है स्वीडन के मशहूर टेलीकॉम कंपनी है एरिक्सन, आपने सुना होगा नाम, ये बहुत ही मशहूर है, उसके इंजीनियर थे डॉक्टर जैप हार्टसन, और उन्होंने जो है वो इसकी ब्लूटूथ की इजाद की थी। और हार्टसन साहब की क्या बात है जनाब, जबरदस्त। और 1994 में एरिक्सन कंपनी में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर इन्होंने काम करना शुरू किया, और 1998 में, हालांकि मेरी बहन ने 96 बताया है, कि 1998 में ब्लूटूथ जो है वो लॉन्च हुआ, उसमें जो मोबाइल कंपनीज हैं उसमें जो एरिक्सन तो थी, नोकिया और आईबीएम इंटेल वगैरह, ये उस दौर की जो कंपनीज थी वो इनमें शामिल है। और पहला ऑफिशियल जो वर्जन ब्लूटूथ का था ना, 1.0 जो है, वो 1999 में मुतारिफ करवाया गया था, 1999 में, यानी कि आज से 27 साल पहले। और ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ क्यों रखा गया, हालांकि ये भी सवाल एक हो सकता था, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि डेनमार्क के बादशाह के नाम पर ये ब्लूटूथ नाम रखा गया था।
और बर्तानिया के बादशाह, डेनमार्क के जो बादशाह थे उनका नाम था हार्डलेट ब्लूटूथ, ठीक है ना, तो उनके नाम पर ये रखा गया, जिन्होंने 10वीं सदी में जो है मुख्तलिफ कबाइल को मुतहद किया था उनके हवाले से। ये मतलब एक दिलचस्प बात है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। और इसका जो ब्लूटूथ का जो मार्क देखते हैं ना, जो बी लिखा होता है दुम के साथ, तो इसकी भी एक दिलचस्प बात है कि ये दो कदीम स्कैंडिनेवियन जो हरूफ हैं, स्कैंडिनेवियन हरूफ, ये एक मुल्क है ठीक है ना, और उस के जो हरूफ बी और एच उसी बादशाह के नाम से के नाम से जो है वो उन्हीं हरूफ से ये इसका लोगो बना यूकिन से, ठीक है ना। तो ये ब्लूटूथ के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐम ही लगी होगी, लेकिन इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। हमारे इरफान मेमन भाई आ गए हैं, अरे वाह वाह वाह, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सुनो रिपोर्ट आज आ गई है, डॉक्टर ने कहा है कि स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह ये टैबलेट से कुछ मंथ में खत्म हो जाएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और गॉड रेडिएशन हो जाएगा, गॉड रेडिएशन, गॉड रेशन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया, और आपका और ऑल फैमिली का बहुत शुक्रिया, ढेरों दुआएं दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ कजन्स हैप्पी हैं और आपको थैंक्स बोल रहे हैं दुआ के लिए। एक अच्छा सा सॉन्ग मेरी सिस्टर रूसा और कजन्स को डेडिकेट कर दीजिएगा। अरे मेरे शहजादे इरफान मेमन, आपके कहने से पहले ही हमने तमाम कजन्स को ट्रैक डेडिकेट कर दिया था, लेकिन अभी दोबारा कर देंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी प्यारी सी बहन का जो स्टेज है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है और उसमें ही कवर हो गया, ये अल्लाह ताला का बहुत करम होता है। और आपको एक और बात बताऊं कि ये इतनी मुजर बीमारी है कि इसका पता भी नहीं चलता, गुप्त होती है बड़ी। ज्यादातर लोगों का जो इस डायग्नोज जो होती है, जब वो पता चलता है कि भाई सिम्टम्स नजर आने लगे हैं, और जब टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि जो कैंसर है वो तीसरी चौथी स्टेज पर पहुंचा हुआ है, तो उस वक्त उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। और डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं कैंसर के, और माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में जो है इसका इलाज भी हो जाता है, तो मगर डॉक्टर्स जो हैं वो जिंदगी तो नहीं बचा पाते, जो मतलब फोर्थ स्टेज या में होते हैं तो या फिफ्थ स्टेज में होते हैं, मगर इतना जरूर कि उनकी जिंदगी थोड़ी सी तवील हो जाती है। उनको ये पता चल जाता है कि भाई ये चार साल, दो साल, तीन साल, पांच महीने, इतनी जिंदगी रह गई है। लेकिन इस हवाले से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सबसे, कैसा क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि हम अपना मेडिकल चेकअप ही नहीं करवाते हैं, हम लोगों में ये आदत ही नहीं है, बस जो होगा पाकिस्तानी, द ग्रेट पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान की जो मैं समझता हूं कि इलीट क्लास है और मिडिल अपर क्लास है, वो इस हवाले से माशाल्लाह से काफी बेहतर है, और वो अपना ईयरली मेडिकल चेकअप जरूर कराते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, जान है तो जहान है। तो इस हवाले से भी आप लोग जरूर सोचा करें, किसी भी हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल के साथ एक मेंबरशिप होती है, और मेंबरशिप करने के बाद ईयरली यानी कि सालाना एक चेकअप होता है, वो चेकअप करवा लिया करें। जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी हो तो ही चेक करवाए इंसान, भाई सालाना चेक करवाने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें खुदा न खासा अगर कोई बीमारी उसने जन्म ले लिया है, खतरनाक बीमारी ने, तो उसके शुरू में ही पता चल जाता है कि भाई ये खतरनाक है, और इसके ऊपर आप इसका इलाज करवाना शुरू करते हैं। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे से भाई इरफान मेमन के, आपने मैसेज करके हमें बताया, और इस हवाले से थोड़ा सा मैंने अवेयरनेस भी दी है अपने तमाम लिसनर्स को। अभी फौरन से पेशतर जनाब एक ट्रैक की जानिब जाएंगे, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे अजरा शब्बीर को, हमारी प्यारी सी चाची की जानिब से।

वेलकम बैक कहेंगे जाने बहारा रश के चमन। ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अरे जनाब एक बात तो मैं भूल ही गया, खाकजादा साहब ने कहा था कि अपने शोज की टाइमिंग बताइएगा, तो अगर आप सुन रहे हैं तो एक छोटा सा मैसेज करिए जी सुन रहा हूँ। तो आपको खैर मैं अपने शोज की टाइमिंग बता देता हूँ कि पीर और मंगल को मेरा शो होता है म्यूजिक ट्विस्टर के नाम से, जो कि रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है पीर और मंगल को। बुध जुमेरात और जुमे को मैं आपके साथ होता हूँ रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक स्लीपलेस नाइट में। बुध जुमेरात और जुमा हफ्ते को छुट्टी होती है जनाब, यानी कि कल छुट्टी, और फिर एतवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हैप्पी आवर्स में मैं आप लोगों के साथ होता हूँ। तो ये थी जनाब सूरत हाल। और आखिर में जनाब एक और ट्रैक की जानिब जाना, और ये ट्रैक जो है बहुत सारे लोगों को डेडिकेट करना है। हमारे अब्बास भाई ने गुड नाइट कह दिया है, ढेरों दुआएं दी हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। हमारे इरफान मेमन साहब ने जो ओके ओके लेट वाला मैसेज था, इनका मैसेज पढ़ लिया। हमारे प्यारे से अयूब लाला ने कहा है शब्बा खैर, जीते रहें मुस्कुराते रहें। इसी तरह हमारे मोरिन भैना ने भी, और मुश्क कह रही हैं कि आए हाय थैंक्स कहा था जी, मुझे पता है मैं चाह रहा था आप इस तरह मैसेज करें, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो लास्ट ट्रैक जनाब हम डेडिकेट करेंगे, हमारे से अब्बास भाई को डेडिकेट करेंगे, समी को डेडिकेट करेंगे, और तमाम जितने भी सुनने वाले उन सबको भी डेडिकेट करेंगे, मुश्क को भी डेडिकेट करेंगे, हैं जी। तो आप लोग दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अब आपसे इतवार वाले दिन। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ब्यूटीफुल ट्रैक आपको सुना रहा हूं। अल्लाह हाफिज।

کریم اتنے کریم اتنے کریم، ادھر سر جھکا ادھر راضی ہو گئے۔